0: जन रिपोर्ट एक घंटा भि अनिवार्य स्थान शुरू कर महीनासम आमा को दूध मात्र खुआ स्वास्थ्य कर्ता उज्यालो भविष्य स्तन पान कराओ स्वास्थ्य
1: स्वास्थ्य कार्य

ईश्वरी कुण्डमा रगत कमी अर्थात रक्त अल्पता देख्दा रक्तमा हामीले सबै अनुहार फिका मिलाउ पढाइमा ध्यान दिन समस्या लिएर रक्त अल्पतामा चाहिँ भोजन लाग काइल साग पात दाल गुडिया आँडा मच्छी सिकार फलफुल आयुर्वेद खाना नियमित रूपमा खाई जङ्क फुड कम गरी सन्तुलित खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका आधार हो।

0: तो करेगा अनुभव जी का भी ना वो पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा ना सुबह से लेना
1: रक्त काल पता में से पहुंचा क्या आई झाक पाक काल गुरी ग्यारह आरा मच्छी शिकार और फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित खाई
0: जंक फूड कम करिए संतुलित खाना

0: ചോദിക്കാം.
1: റേഡിയോ കുറവ സ്റ്റേഷൻ ദ്വാരാ സംഗീതമായി സന്ദേശം.
2: আজকে ওয়েস্টার কো ছাত্র
0: জমিনবাট চট্টান পড়ে যত ঠুলো আওয়াজ আপনি পানি মূল সুখে

0: करें स्वास्थ्य सेवाओं प्रति बद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की बद्धता घटी, वैमिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूप में टिकली। यहाँ तक स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर्दा करे ऐसी कौशल अस्पताल पास में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती।
1: अस्पताल से सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ चोरी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे पीडीओ एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुखबाल बिना नशा दाग बैलक हाट कोरा अनि चल्ना बिरामी रूपमा थेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे उपचार कैदी था
0: नशा द्रव्य बिरामी हुकनके बिना प्रेसर फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कैसे
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कैदा असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैदा कोशीले अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया प्राण पेपर पंप दक्षिण पाजर
0: संपर्क फोन नंबर 084-4-0092 और 084-4-0020 संसदीय पूर्व रेखा।

0: से अपने कार्य शुरू करो और नाम मेरा कोई साग सब्जी और दूसरे उपस्थित पूरक खाना है पत्थरलाई तंदुरुस्त बनाउँछ पूरक खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म यस प्रकार चलेका छन्
1: रेडियो पूर्वमा स्थितको सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशीलाई चाहिँ सहकारी छ

बसा। मेरा नाम यशोदा दशरथ भाई वास्तविक नगर पालिका वाला प्रॉपर्टी जनपति उद्योग स्थापन एक पटक सेवा करते हैं। आवश्यक स्थानीय

ध्यान दिनभर जीवन खत्म हुई संतुलित खाना खाए व्यायाम सब न करी धूम्रपान अधिराम से दूर रही भर नियंत्रण करी आज निर्भय काली जीवन अपना निशाना रोग से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य।

0: से संपर्क बसाई हानिकारक नहीं रखा वो फिर यदि संपर्क लाभदायक से पूजा केंद्र में जाए
1: विश्वास लग्न में सही जानकारी पश्चात नकु उपचार केन्द्र कहाँ बाहर सफलता लगेगा अधिकारी स्नेट नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती है। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय पूर्णाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र संयुक्त सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्र अग्रसर साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा चलिरहेका लागि प्रस्तुत सन्देश

जय कहा। संध्या सवा छह बजे हमारे संदेश को अपना और स्वागत का संध्या किन्तु संभव में कुमार रेडियो प्रभाव एफ एम बढ़ दिया।

0: that is a hit for a woman and a child, and we got a grade for the second degree, and that is the hospitality business and ammo, who will agree to that.
1: गौरतलब है आजमपुर नगर पालिका में चुनाव को पहला एसपी गैस और आपूर्ति पार्षद सर्वसाधारण दुकान दैनिक कराईसी कामकाज संचालन का अशिनाई विवाद राजापुर केरुवा लगायत का स्थानीय प्रचार मरला मनोकामना गैस फेरी गैस हो व्यापार गैस डीलर में व्याप्त गैस उपलब्ध होने विवाद उपभोक्ता खाली सिलेंडर बोकर फैल फैला डीलर ढाई पड़ना अवस्था सार्वजनिक सूचना विभाग स्थानीय वासी के अनुसार नेपाल से सीमित परिमाण में केवल पांच आपूर्ति अलगपुर से मार्ग अनुसार वितरण फिरिशिया करो गैस ऐना जानकारी पाइलगत्ता से खाली सिलेंडर जमा करना होने तथा कुछ होटल व्यवसायी चार परिमाण में गैस पैसिना करने कारण सामान्य उपभोक्ता गैस में से वंचित होना पड़ता है। गैस अभाव के कारण दैनिक खाना पकाना समस्या भी लगे कि स्थानीय नियमित और पर्याप्त आपूर्ति का व्यवस्था कर संबंधित निकाय से मांग करने बाद उपभोक्ताओं का वितरण प्रणाली अपारदर्शी हो व्यवस्थित बनाए तथा इसी में अभाव खरीद कर संबंधित निकाय प्रभाव कार्य अनुगमन कर पड़ना आवश्यकता बने बाद गैस सिलेंडर के बारे में खरीद व्यापार से जो सीमित परिमाण में गैस प्राप्त बिना विलापुर से मात्र अनुसार सर उपभोक्ता पर उपलब्ध कराए कठिनाई वितरण अंदर के बाद एक खबर राजापुर से बिना अधिकारी पठाई बाद नेपाल में कमैया मुक्ति घोषणा विगत 26 वर्ष हो सकते व्यक्ति पर दिया प्रख्यात मुक्त कमैया अवस्था काफी सुधार फिर सकल हो अपने मुक्त होते से भी आर्थिक पुनर्स्थापना फिर सकते रोजगार शैक्षिक स्वास्थ्य लगायत का समस्या को तुरंत
2: नेपाल सरकार 2057 साल शाम 3 बजे कमैया मुक्ति घोषणा कर घोषणा 26 वर्ष मनाए गए प्रभावकारी व्यवस्था पर पुनर्स्थापना को हिंसा करे प्रदेश का मुक्त कमैया पर आदमी भूमि श्रम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत समस्या संचुट चलने कर आदमी के जीवन स्तर का सा निर्भर अभाव चेहरा प्रदर्शन करेगा दास मुक्त कमैया।

बाहर शिक्षा और स्वास्थ्य में लगेर 3% को भारी खेल घोषणा करने आज दीर्घ सामाजिक संसार से प्रधानमंत्री चाहे निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लगेर 3% समाचार पर आव भर कहल बमोजिम जो कार्यान्वयन करें जनक सब खर्च और निराशा आगो प्रदान कसे अर्थमन्त्री सोनी वाकेसँग परामर्श पर्छ हालको लाख समुदाय शुल्क लागू विकल्प कलाप जाँच गरेर सरकार र जनताको विश्वास अपेक्षामा चाहिँ 15% कि सरकार हो हाम्रा मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम प्रति सबको नागरिकको गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गरिदा हो त्यही बारे जानकारीदेखि प्रधानमन्त्री शाहकला 3% समाचारको अन्डेन्डाका उद्देश्य दुर्गमको 55 क्षेत्रका नागरिकको नुदा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरेर दलित सीमा देखि तथा दिपम बालबालिका अङ्कन सहयोग गर्न स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्न हो प्रधानमन्त्री

अस्पताल को नियमित रूप में उपलब्ध करने की घर सरकार प्रतिवेदन प्रधानमंत्री शाह

दिई तर पुनः नियन्त्रण गरी आज निर्णय कालिक जीवन अन्तरा मुसलमान पशु बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो पूर्वाभ्यासको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितकारी सचिव

ये चाहता कि उसकी कंपनी काफी दाली विकास करे को क्यों डिंगा खुद लाई चार देखि 60 वर्ष उम्र समूह का व्यक्ति में प्रयोग करना स्वीकृत प्रदान करो भारत को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण

होगी, लेकिन तारा बहसा करके डायरेक्टर को कुछ तरह भी देंगे और कुछ थोड़ा सा भी मिला ना जाके बाबा के बाबा प्रसन्न होना बाबा जी के घर में हमें शायद बहुत डायरेक्टर से पता नहीं लगेगी थोड़ा सारा कुछ संतान ये नहीं गिर रही है एक तो संतान से नहीं है वो साइकिल नहीं है सबका मुख्य और कचारा वो पुरस्कार होना सब कहना नहीं बना सबका था पंखे जो और सहना को नहीं कर रहा आप भूमि बनाइए पुरस्कार को छह से फल मिला और सब संपत्ति संपत्ति सवारना सब चाहिए सबका मुख्य पटिया पर वो कचारा देनी पड़ेगी सबके सामने सबके मुझे पाए।